प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करनी चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

फिल्मा जिनका नाम फातिमा रशीद रखा गया था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें नरगिस का नाम दिया। नरगिस जख्म जून सन 1929 में रियासत कोलकाता में पैदा हुई। यहाँ ये तस्करा जरूरी होगा कि नरगिस ने 6 साल से फिल्मी दुनिया में कदम रखते हुए चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह अपने फिल्मी दौर का आगाज किया था और उस फिल्म का नाम था तला।

0: हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थी और वालिद उत्तम चंद मोहन चंद पेशे से डॉक्टर थे और उनके भाई अनवर हुसैन भी एक फिल्मी दुनिया के जाने माने अदाकार थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस बेबी के नाम से उन्होंने अपने फिल्मी दौर का आगाज किया था और फिर उन्हें सारी फिल्म इंडस्ट्री नरगिस के नाम से जानने लगी। और फिर 14 साल की उम्र में महबूब खान साहब ने अपने फिल्म में बतौर अदाकारा के रूप में लिया। फिल्म का नाम था तकदीर।
1: ऐसी भी होती है जो रुपए से खरीदी जाती है।

खूब जमी, चाहे वो दिलीप कुमार और राज कपूर के अंदाज हो या फिर राज कपूर के साथ आवारा बरसात और चोरी चोरी।

यह किस्सा भी मशहूर है कि राज कपूर ने कब नरगिस से मुलाकात की थी। हुआ ये था कि राज कपूर की वालिदा को जद्दन बाई से मिलना था और जब वो उनसे मिलने उनके घर पहुंची, जब दरवाजा खुला, नन्ही नरगिस ने जो उस वक्त

जहां एक तरफ नरगिस ने बतौर रोमांटिक हीरोइन अपने कदम जमा लिए थे, वहीं महबूब खान एक बहुत ही अनोखी फिल्म की तैयारी कर रहे थे और ये फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया में नरगिस बतौर राधा किरदार निभाया था और इस किरदार में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी थी जो नरगिस ने बखूबी निभाई और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। इंडिया में सुनील दत्त का किरदार दरअसल दिलीप कुमार निभाने वाले थे, लेकिन दिलीप कुमार ये कहते हुए मना कर दिया था कि ये कैसे हो सकता है कि मैं मेरी फिल्म में माँ कहकर पुकारता हूँ, वो तो मेरी हीरोइन है। जबकि महबूब खान ने ये भी मशवरा दिया था कि हम उसे डबल रोल कर लेंगे जिसमें बाप और बेटे का रोल भी आप ही करें। और इस तरह से सुनील दत्त को ये फिल्म मिली। कौन जानता था कि आगे चलकर दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे।

मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान मुहिब आतिशजदगी का वाकया पेश आया था और उसमें नरगिस फंस गई थी। जब सुनील दत्त ने उनकी जान बचाई थी, इसी वजह से नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की थी, लेकिन सुनील दत्त इस तजवीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नरगिस बहुत पसंद थी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान आग जरूर लगी थी, पर उस वजह से उनकी शादी नहीं हुई। दरअसल उनका रिश्ता बना जब नरगिस ने उनके अहले खाना में उनकी बहन का इलाज करवाया और उन्हें ये लगा कि ये ना सिर्फ उनका ख्याल रख सकती है बल्कि उनके अफराद खानदान का भी अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है। इसके सामने शादी की बात रखी। 11 मार्च सन 1958 में नरगिस और सुनील दत्त शादी के बंधन में बन गए और उन्हें 3 बच्चे हुए, जिनमें संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त शामिल है। गौरतलब है कि संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर मारूफ अदाकार है, जबकि प्रिया दत्त अपने वालिद की तरह सियासत से वाबस्ता है। दूसरी जानिब बहन नम्रता दत्त की शादी बॉलीवुड अदाकार कुमार गौरव से हो गई। कहा जाता है कि शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और अपनी जिंदगी समाज की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर दिया।

नामजद किया गया था और वो पार्लियामेंट में शिरकत भी किया करती थी। लेकिन इसी दरमियान उनकी तबीयत में बिगाड़ आ गया, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई थी, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका भी गई थी। लेकिन जब वो हिंदुस्तान वापस हुई तो कोमा में चली गई। नरगिस की एक ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई, और वो ख्वाहिश ये थी कि वो अपने लड़के संजय दत्त को फिल्म पर्दे पर देखें और वो फिल्म रॉकी की प्रीमियर पर जरूर जाएं। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्हें व्हील चेयर पर ले जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब फिल्म रॉकी की रिलीज होने वाली थी 7 मई 1981 को, लेकिन उससे कुछ दिन कबल यानी 3 मई 1981 को

0: में गूंजती है नए जहां की आहटे,
1: में गूंजती है नए जहां की आहटे।
0: मचल रही है जिंदगी, सवल रही है जिंदगी,
1: सवल रही है जिंदगी, मचल रही है जिंदगी,
0: सवल रही है जिंदगी, मचल रही है जिंदगी,
1: मचल रही है जिंदगी, सवल रही है जिंदगी,
2: मचल रही है जिंदगी।

प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

जिनका नाम फातिमा रशीद रखा गया था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें नरगिस का नाम दिया। नरगिस जसमजून सन 1929 में रियासत कोलकाता में पैदा हुई। यहाँ ये तस्करा जरूरी होगा कि नरगिस ने 6 साल से फिल्मी दुनिया में कदम रखते हुए चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह अपने फिल्मी दौर का आगाज किया था और उस फिल्म का नाम था तलाश।

0: हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे और वालिद उत्तम चंद मोहन चंद पेशे से डॉक्टर थे और उनके भाई अनवर हुसैन भी एक फिल्मी दुनिया के जाने माने अदाकार थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस बेबी के नाम से उन्होंने अपने फिल्मी दौर का आगाज किया था और फिर उन्हें सारी फिल्म इंडस्ट्री नरगिस के नाम से जानने लगी। और फिर 14 साल की उम्र में महबूब खान साहब ने अपने फिल्म में बतौर अदाकारा के रूप में लिया। फिल्म का नाम था तकदीर।
1: लेकिन चंद खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो रुपए से खरीदी।

खूब जमी, चाहे वो दिलीप कुमार और राज कपूर के अंदाज हो या फिर राज कपूर के साथ आवारा बरसात और चोरी चोरी।

ये किस्सा भी मशहूर है कि राज कपूर ने कब नरगिस से मुलाकात की थी। हुआ ये था कि राज कपूर की वालिदा को जद्दन बाई से मिलना था और जब वो उनसे मिलने उनके घर पहुंची, जब दरवाजा खुला नन्ही नरगिस ने जो उस वक्त पकोड़े बना रही थी और उस कमसिन हसीना के माथे पर बेसन लगा हुआ था, चुनांचे राज कपूर ने यही सीन को अपनी फिल्म बॉबी में भी इस्तेमाल किया था जब ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया से मिलने जाते हैं।

शादी नहीं थी। दरअसल उनका रिश्ता बना जब नरगिस ने उनके अहले खाना में उनकी बहन का इलाज करवाया और उन्हें ये लगा कि ये ना सिर्फ उनका ख्याल रख सकती है बल्कि उनके अफराद खानदान का भी अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है। इसके सामने शादी की बात रखी। 11 मार्च सन 1958 में नरगिस और सुनील दत्त शादी के बंधन में बन गए और उन्हें 3 बच्चे हुए जिनमें संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त शामिल है। गौरतलब है कि संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर मारूफ अदाकार है जबकि प्रिया दत्त अपने वालिद की तरह सियासत से वाबस्ता है। दूसरी जानिब बहन नम्रता दत्त की शादी बॉलीवुड अदाकार कुमार गौरव से हो गई। कहा जाता है कि शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया और अपनी जिंदगी समाज की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर दिया।

नामजद किया गया था और वो पार्लियामेंट में शिरकत भी किया करती थी। लेकिन इसी दरमियान उनकी तबीयत में बिगाड़ आ गया, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो गई थी, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका भी गई थी। लेकिन जब वो हिंदुस्तान वापस हुई तो कोमा में चली गई। नरगिस की एक ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई, और वो ख्वाहिश ये थी कि वो अपने लड़के संजय दत्त को फिल्म पर्दे पर देखें और वो फिल्म रॉकी की प्रीमियर पर जरूर जाएं। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्हें व्हील चेयर पर ले जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब फिल्म रॉकी की रिलीज होने वाली थी 7 मई 1981 को, लेकिन उससे कुछ दिन कबल यानी 3 मई 1981 को

0: फिजा में गूंजती है ये नए जहां की आहटें,
1: फिजा में गूंजती है ये नए जहां की आहटें।
0: मचल रही है जिंदगी, सवल रही है जिंदगी,
1: सवल रही है जिंदगी, मचल रही है जिंदगी,
0: सवल रही है जिंदगी, मचल रही है जिंदगी,
1: मचल रही है जिंदगी, सवल रही है जिंदगी,
2: मचल रही है जिंदगी।

0: फिर हम पूछेंगे बाबू दिन है कि रात है।
1: ओ, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते

0: वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सरजी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: हाँ, ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा।